देव दैतो जचन उपजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझेउ हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी सकल परजा जिने आप संभाली सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को बल मोहबत कियो। कड़ कड़ के अंतर की जान तो भले बुरे की पीर पछान तो चीटी ते कुंचर असूला उनसा पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछानाई कड़ कड़ के पड़ पड़ की जानाई जाऊद कर करा कर तारा प्रजा तर तब देह पारा। जाबिया कर कर तो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ जीते बदन श्रेष्ठ सवतारे आप अपनी बूझ उचारे।

पुराण कथा। जे अस तो जो तब शरण परे, तिनके दुष्ट दुख तुह मरे। पुरख जन पग परे तिहारी, तिनके तू संकट सपटारे। जो कल को एक बार त्याए है, ताके काल निकट न है। रचा होता है सब काला, दुष्ट अरिष्ट अरंत काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट चाछव सकर न कोई। एक बार जिंत मैं संभारा, काल फास देता हूँ बारा। जिन डर नाम तिहारू कहा, दर्द दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो बारी। सर्प ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दुख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुव्रता। किल बिकसकल देह को हरता, दुष्ट दुखिन को छह करता। श्री अस तुज जा पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन वांछित फल पावे सोई, दुख नत सभ्यापत कोई अड़िल। सुनै गुंग जो जाहे सो रस न पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुर तय आवई। दुख दर्द पाओ निकट नंग, तिन नर के रहै हो। जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई। संबत 17 सहस पुण जाए, अर्ध सहस पुण तीन कह जाए। भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा, तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा। इत श्री चरित्र पख्याने, तिरे अंग त्रित्री मंत्री भूप संवादे। 405 चरित्र समापत, मस्त शुभ मस्त अप जूं दोहरा। दास जान कर दास पारू, कीजा कृपा अपारू। आप हाथ दर रख मोहे, मन क्रम बचन विचारू। चौपाई।

कृपा प्रसाद सवैया पाए गहे जपते तुमरे तपते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह माते एक न माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कह हम एक न जाने ओ श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे बखाने ओ दोहरा अगल द्वार को चाड़ के गए हो तुहार द्वार बाहें गहें की लाजे अस

आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज स्थिति मन वजिया वधाइया राग रतन परवार प्रिया शब्द गावण आईया शब्द

चरण अरविंदो जिस मह अमृत ज्ञान है मान भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच बेकार तिन संतन को बंदना

दर्शन प्यासी दिन सुरात कितनो फन दिन नीत खोल कपट गुर मिलिया मान के हर संग मीत सकह तन अहम सुसहज सुभाय दर्शन परसिय गुरु के जन मरण दुख जो

कह कह जावे तुम सर अवरण कोई, भगत हीन नानक जन जंपै हौसा लाही सच्चा सोई। कहंदे कह कह कह जावे तुम सर अवरण कोई, भगत हीन नानक जन जंपै हौसा लाही सच्चा सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह।

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंग फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे वडाणी विस्माद धरती विस्माद काणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संयोग विस्माद विजोग।

जाने पर मानंदा साधक संग ना ही हो ताप साधक संग तजाय सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साधक संग न कबहू तावै साधक संग सदा थक पावै साधक संग बस्त अगोचर लाए साधु कै संग जर सह साधक संग बसा थन उचाए साधु कै संग महल पहुंचाए साधक संग दृढ़ा सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साधक संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सब थन गम साधक संग सफल जनम साधक संग नहीं कट कालो दर्शन भेटत होत निहाल साधक संग कलो खत हराए साधक संग नरक पर हराए साधक संग इहा उहा सोहेला साध संग बिचरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावै साधक संग न मिर्था जावै पार ब्रह्म साध रसाई नानक उदरै सा सुन रसाई साधक संग सुनो हर नाव साध संग हर के गुण गाओ साधक संग न मन ते बिसराए साध संग सरपण निस्तराए साधक संग लगे ब्रह्मीठा साधु कै संग घट कर जीठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संग गत पई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा वेद न जाना है जीता सुना तीता बख्याना है साध की उपमा तेह गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंच ते ऊंची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बनाई नानक साध प्रभेद।

ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म कविता, ब्रह्मज्ञानी एक संहिता, ब्रह्मज्ञानी कह हुए अचिंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्मज्ञानी जिस करै प्रव्याप, ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्मज्ञानी को बाल बाल जाइय, ब्रह्मज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्मज्ञानी का सगल मन बाहे, ब्रह्मज्ञानी का कौन जानै भेद, ब्रह्मज्ञानी को सदा देश, ब्रह्मज्ञानी का कितने जाय अधि अखर, ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखानै, ब्रह्मज्ञानी की गातु, ब्रह्मज्ञानी जानै, ब्रह्मज्ञानी का अंतर पारु, नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्मज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्मज्ञानी सब जीव नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुग तो जीव का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरख बधाता, ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी, नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का धनी, सलोक उतारै जो अंतर नाम, सर्व में पीखै भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक ओह परस सगल निस्तार, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन मह प्रीत निरंजन दर्श, परत्रै रूपना पीखै नेत्र, साध संग टल की साध संग साध की टहल संग संग संग हेतु, करण सुनै काहू की निंदा, सब ते जानै आपस कौ मंदा, गुर प्रसाद बिखिया पर हराए, मन की बात न मन ते टरै, इंद्री जत पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य कुवैसा परसु, बैसनो सो जिसु परसु प्रसन्नो, बिचन की माया होए ते भिन्न, कर्म करत हो वै नि कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म, काहू पल की इच्छा नि बाचै, केवल भगत कीर्तन संग राचै, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब पर होवत कृपाल, आप दृढ़ है अवरै नाम जपावै, नानको बैसनो परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, भगत सगल ते आगै दुष्ट का संग, मन ते बिनस सगला भरम, कर पूजा सगल पार ब्रह्म,

थियो कबू ऊच नीच माहे बसाई कबू सोग हरक रंग हसाई कबू नींद चिंद बिहारो कबू ऊ आकाश प्याल कबू बीता ब्रह्म विचारु नानक मिलावण हारु कबू नृत करम बहु पातु कबू सोय रह दिन रातु कबू महा क्रोध विकराल कबू सर्व की होत्र वालु कबू होय बह बड़ राजा कबू भिखारी नीच का साजा कबू कीर्त मह आवै कबू भला भला कहावै ज्यो प्रभु राखै तिब ही रहै गुरप्रसाद नानक सच कहै कबू होय पंडित करे बख्यान कबू मौन धारी लावै ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिद्ध साधक मुक्यानु कबू कीट हस्त पतंग होय जिया अनक जौन भरमै भरमिया नाना रूप ज्यो स्वंगी दिखावै ज्यो प्रभावै तिवन चावै ज्यो तिसभावै सोई होय नानक दूजा अवरण कोय कबू साध संगत इह पावै उस स्थान ते बहुर न आवै अंतर होय ज्ञान प्रगासु उस स्थान का नहीं विनाश।